0: को आपने वह दृश्य देखे होंगे, सबके आंखों में आंसू।
1: इतना विकास कर दिया है कि यहाँ आ जाओ तो जाने का मन ही नहीं करता।
2: विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति।
3: पिछले साल 2025 में लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए का हुआ बिजनेस हुआ और स्टेट गवर्नमेंट को अंदाजन करीब 25,000 करोड़ रुपए का टैक्स आया।
4: पहले हम 1,000 रुपये कमाते थे, अपना पर कमाते रोज के 4,000 से 5,000 रुपये।
5: मंदिरों का भव्य निर्माण जैसे सोमनाथ, उसको लेके अभी उत्सव भी हुआ, या अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर, इनको केवल आप हिंदू नजरिए से मत देखिए, मैं तो इनको भारत के गौरव के नजरिए से देखता हूं।
2: भारत का तो विजन है विकास भी विरासत भी।
3: नया एक जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उनका आह्वान है, विकास भी विरासत भी।
6: यशस्वी प्रधानमंत्री भारत के जो उन्होंने सपने देखा, महादेव की योजना से देखा, और जो महादेव की योजना है वह स्थल कैसे हो सकती है।
7: हेलो, माय नेम इज शरद अवस्थी। श्री राम ऑफ अयोध्या, विश्वनाथ ऑफ काशी, महाकाल ऑफ उज्जैन, केदारनाथ ऑफ द हिमालयाज एंड सोमनाथ ऑन द सी शोर, देयर जियोग्राफी इज डिफरेंट, देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट एंड देयर ट्रेडिशंस आर डिफरेंट, बट द स्पिरिट दैट यूनाइट्स देम इज वन, एक भारत श्रेष्ठ भारत। इन द न्यू डिस्टिंक्टिव एंड मॉडर्न फॉर्म, these pilgrimage centers have become not only places of faith but also pillars of cultural unity, economic prosperity and national self-confidence. How did this transformation take place over the past 12 years? Today we are going to present a glimpse of it. Ayodhya, whose very identity exists because Lord Shri Ram was born here. What it means to be his birthplace and how far that reverence extends, one should ask Ayodhya itself.
8: I believe that wherever Hindus and Hindu culture exist in the world, Lord Shri Ram is an ideal there. This is a dream come true for generations.
7: Now imagine a city known across generations for Lord Ram. But that symbol of pride is removed from its own soil. What remains in such a city?
9: Whenever I used to visit Ayodhya earlier, it felt like the city was crying.
10: We used to live in a house, but our Ram Lalla was living in a tent. It feels very good to see him inside his temple now.
5: उस समय हिंदुओं की क्या मानसिक स्थिति रही होगी?
11: Can you tell me what the mental state of Hindus might have been at that time when these Islamic invaders and raiders destroyed these places? That trauma, what is called mental stress, is still present even today across generations.
5: वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरीके से आज तक मौजूद है?
7: Devotees of Lord Ram